हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सोम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, 14 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 030-262-6611। वेबसाइट होता है radio sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए यह प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं अपना मोटर कार में अपना घरों में। रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और यानी कि रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त।

हर सुबह ये सुंदर भजन सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। चौथा दिन यानी कि फिर द डख नवरात्रि का है। आप सभी को एक बार फिर से रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से और हमारा पूरा परिवार के तरफ से एक शुभ नवरात्रि बस पेश किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, चौथा दिन है यानी कि फिर द डख, सभी को बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है। चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं और वो भी नरेंद्र चंचल की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। नरेंद्र चंचल की आवाज में एक सुंदर सा भजन नवरात्रि के खास उपलक्ष्य पर।

सुंदर सा भजन नरेंद्र चंचल के आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। नवरात्रि के उपलक्ष पर ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई और रेडियो SBS की जरिए आपको खबर किया जा रहा है। चौथा दिन है फिर ददख और कुष्मांडा माता जी का दिन है, तो चले अब की बार नवरात्रि के खास उपलक्ष पर सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन पेश की गए माता कुशमंदा, भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर सा भजन की ओर।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में नवरात्रि के खास उपलक्ष्य पर आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। अभी आपने सुना, चले प्रोग्राम में सुंदर सा चालीसा की ओर हम आपको ले चलते हैं। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, आज चौथा दिन है यानी कि फिर द दख, और आज कुष्मांडा माता जी का दिन है। तो चले सुंदर सा चालीसा बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर सा चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आप सभी को एक बार फिर से शुभ नवरात्रि और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बहुत सी सुनने वालों प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम। और चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलेंगे। जिस तरह से आप सभी सुनने वालों को खबर किया है कि आज फिर दख है नवरात्रि का और आज कुष्मांडा माता जी का दिन है, तो हम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश करेंगे माता कुष्मांडा जी की आरती। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए, और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए भी, उनकी पूरा परिवार के लिए सभी को शुभ सुबह, शुभ दिन और एक शुभ नवरात्रि के साथ ये सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की सरिये कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। धूप और झूरा मौसम होगा। तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS का। चलिए प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना होगा उदित नारायण की आवाज में। उदित नारायण की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, तो जरूर सुनते ही रहना। 8:00 प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है। बुधवार का दिन 14 अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है उदित नारायण। फिल्म का नाम जान सा रोशन चेहरा।

0: ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। सोनू निगम एन श्रेया घोषाल, फिल्म का नाम चेहरा, उसी फिल्म का ये गाना। गाना का बोल है तेरी बातों में। रेडियो SBS के जरिए गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम एंड श्रेया, तेरी बाहों में। गाना का बोल।
1: बाहों में हम जीते मरते रहे, यूं ही

श्रेया जी की आवाज में गाना पेश किया है तेरी बाहों में। 5:05 यानी कि 5 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजे में। और आज मुस्ताक है 13 अक्टूबर बुधवार का दिन, 14 अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तकरीबन एक महीना के बाद एक जबरदस्त कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं, खासतौर पर उदित नारायण और उनका बेटा आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट रोटरडम आहोई में पेश होने वाले हैं। और जिस तरह से कल की प्रोग्राम में रिक्लाम के जरिए, कमर्शियल के जरिए आपको खबर किया गया है कि 70% से ज़्यादा टिकट जो है बिक चुका है, और जब ही आप टिकट नहीं ख़रीदा है तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप ख़रीदिए। वेबसाइट जो होता है जहां पर अपना टिकट को आप ख़रीद सक गए हैं, iStripTickets.com, उसी वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप ख़रीद सक गए हैं। उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट सोमवार 15 नवंबर रोटरडम आहोई में पेश होने वाले हैं। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साथ में अलका जी की आवाज़ में एक खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम जिंदा दिल, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। और गाना का बोल है एक मासूम सा चेहरा। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। बाहर की ओर हम देखते हैं तो अंधेरा अंधेरा सा मौसम है, लेकिन आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम होगा।

सरगम की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम है कि हर एक घंटे पर रिक्लाम के साथ न्यूज और मौसमी समाचार और साथ ही साथ फुटकेट से इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। खबर आपने सुने होंगे कि कहीं कहीं हॉलैंड देश के अंदर में खासतौर पर यूट्रेक शहर के अंदर में आज बस नहीं चलेंगे, बस और ट्रेन नहीं चलेगा। इस पर आप जरूर गौर कीजिए। सोनू निगम एंड श्रेया फिर मिलेंगे, फिल्म का नाम

फिर मिलेंगे, फिल्म का नाम सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश की गए है, बेटा दिल है। 11 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, सुबह 9 बजे में, अभी 9 बजे से पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगा। आज सुबह की वक्त बहुत से सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार किया है, जारी जारी सुनने वालों जो होते हैं रेडियो SBS का ऐप के जरिए तार कर रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 030-2266611। स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं या तो इसी तार के नंबर पर ऐप भी आप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी तार कर सकते हैं। एक और खूबसूरत गाना आज की सुबह की प्रोग्राम में, कुमार सानू एनाल का दिल में सनम की सूरत।

का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। हर सुबह पुरानी नगमे आप हर के लिए बस पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के और तकरीबन 11 बजे तक। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म

0: और उसके बाद पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तो चले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है शुभ सुबह शुभ दिन के साथ गुड मॉर्निंग के साथ। चलते हैं हमारा आज का प्रोग्राम का पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। दमायती मुकेश की आवाज में ये गाना
1: तेरे हो
0: गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप हर एक सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

द मल्टी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की

जिसमें ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा भी है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले अब की बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं पुरानी नगमे रेडियो SBS की जरिए जो पेश किया जा रहा है जरूर।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में असर उम्मीद है ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। मोहम्मद रफी के बाद चले किशोर कुमार की ओर।

किशोर कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। असरों में थे ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है कुछ ऐसे बंधन होते हैं।

21 और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ ऐसे बंधन होते हैं। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना प्रोग्राम में होगा मुकेश लता और मोहम्मद रफी की आवाज में। मुकेश लता एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए एक गाना लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये पुरानी फिल्म का गीत आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अपनी बार मोहम्मद रफी और लता

आशा जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है लाइव के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। किशोर और आशा जी के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ फिल्म कब क्यों और कहां, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए धर्मेंद्र का एक और मूवी की ओर, फिल्म की ओर, तुम हंसी मैं जवान। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। तो रूप की रानी

दलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर, हम आपको ले चलते हैं अपनी बार फिल्म दुलारी की ओर। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है कि मिल मिल के गाएंगे। काफी पुरानी फिल्म है, फिल्म दुलारी। उन्नीस सौ 1949 का फिल्म, 1949 का

लता जी की आवाज में फिल्म दुलारी का गीत पेश की गई। सुनने वालों, चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं यशुदास की ओर। हमारी बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो यशुदास की गाने बहुत पसंद करते हैं।

यसुदास के आवास में पेश की गए चार दिन की जिंदगी है। फिल्म का नाम एक बार कहो, 1980 का फिल्म, 1980 का फिल्म का गीत यसुदास की आवाज में बस पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में। किशोर कुमार

कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे मरहूम मोहम्मद रफी की ओर। एक नारी दो रूप फिल्म का नाम होगा। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार

गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना आज की प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है। संसार है एक नदिया, हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको आज की प्रोग्राम में फिर से ले चलते हैं लता मंगेशकर की ओर। एक काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक और गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, साथ में होगा महेंद्र कपूर।

रेडियो SBS के जरिए। ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर से। रामचंद्र का संगीत पर एक गाना पेश किया जा रहा है, आपका चेहरा माशाल्लाह। गाना का बोल है आपका चेहरा माशाल्लाह, मोहम्मद रफी एनाशा।

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम की

जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अलका एंड विनोद राठौर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और हम अबकी बार आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गैम्बलर। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 9 8 2 2 66 66।

शान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम गेम। फिल्म गेम के बाद हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम गैंगस्टर।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवेल की आवाज में अभी आपने सुना। अरिजीत सिंह और पलक की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए। चले प्रोग्राम में विजय प्रकाश एन शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

अनु और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना पेश होगा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार कुमार सानू और खास तौर पर साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेट स्टोरी नंबर दो उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुनिधि चौहान की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश होगा अलका याग्निक एंड बाबू सुब्रियो की आवाज में। अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है

हल्का याग्निक और बाबू सुब्रियो की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में, और फिल्म का नाम

0: सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया एंड श्रेया प्रोग्राम में।
1: ओ

शमिया एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल और शान की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अदनान सामी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में पेश किया जा रहा है

जीना यहाँ मरना वहाँ, इश्क सिवा जाना कहाँ। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में एक और खास गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश की आवाज में आपकी

मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में ये गाना आप सुनते ही रहना।

किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: मस्ताना।
1: खासतौर पर आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले काफी प्यार भरे गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर और वो भी खास तौर पर बदलते रिश्ते फिल्म का नाम है। किशोर कुमार और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

कल्याण पूरा और मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आलमगीर और खासतौर पर मेहनाज की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना पाकिस्तानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी नख़्मे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा।

पद्म श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खास गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले लता मंगेशकर की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार प्रोग्राम में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। पर आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिट इज यू आरजे अंशुलि रामलाल दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

सैलरू सैलरे, क्या बोला फिर बोला रे, इसे फिल्म शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. De film Ghatkom Dag gezongen door Udit Narayan, Elke Yachnik, Sonu Nigam en Jasminder Narula. Jhumka Chandida, Chandida, Jhumka Chandida.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film Fana en uit de film Roehiafsa is het volgende liedje via Radio SBS. Kistong.

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना डे की आवाज में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। इस गजल दूर सोनू निगम एनल के याचने कैन कम तो द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgende liedje via Radio SBS. In het programma Geet om Kille Her hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

भी सिर्फ फिरा तू भी सिर्फ फिरी है, गजोंगा दोर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजोंगा दोर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। इस वजह से दुर्गुमार सानू है बस आउट ऑफ फिल्म दिलवाले। हाँ वो फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान, खुशाम दूर जावेद अली कौम तू जो मिला।

ऐ मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। KK की आवाज में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।